0: मुन्ना को बाकी है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कौन वड़ा में क्या दक काफ़ूंग अता
2: मुन्ना थी है बुरको वैंडना हिंका में ने अफन थी कंको लन्ना
1: तिकु तुम हाउ दहाई रंगल लाए तिहं मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकां कंको देन ना है दी मुन्ना वरा उपावे
3: हिमबिह रक्का तेरुं
4: हिमबिह वैक्सीन दे डोज हमकुरुं
3: साबुन लागें अद्दोउं
4: केसा किबी अलाणम अंगे आने फे निवा कुरुं
3: हिमबिह गे एवस अलामातें हुरनम मास्क एळुं
4: आदि हिमबिह गे अलामातें हुरनम एकहेरिवुं
3: हिमबिह गे अलामाते फेनिजनम लसनु कुरवा सिही फरवा होदवा
5: كيرت قرآن جه قاف سورة جه أشار ونآية جه الله تعالى وحي كربا فاوه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما ني كرا عملت بلحت ون اينا جه كاريغا حاضر وملائكة كنتي اينا يكن إبوس بهن نبنوه
6: Me, Dinu Gyad, me, Asuru Namadok.
7: Allahu Akbar.